जो किछ है सो तेरा, कदों झोलियां भरदियां ने जदों एडी निम्रता ते एडा प्यार आ जावे। महाराजा रणजीत सिंह किन्ना सत्कार गुरु दा करदे ने, अपने घर दे विच सब तो उच्चा स्थान गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा। जदों भी अपने महलां विच आंदे ते सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे दर्शन करदे ते फिर अपने बच्चियां नूं मिलदे सन। किते भी कार विहार ते जाना ते पहला सतगुरां कोलों आग्या लैंदे सन। एक दिन रणजीत सिंह जी बहुत भारी जंग लड़न वास्ते जा रहे ने, ते जान तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अगे गल विच पा के पल्लू अरदास कर रहे ने, सतगुरु मेरे विच कोई सियाणप नहीं, मेरे विच कोई बल नहीं, तुसा बख्शिश करनी है मेरी जित हो जावे। इतिहास विचों की सोझी

मेरा मुझ में किछ नहीं। आ एक सेठ तन दौलत बड़ा गोल है पर कोई औलाद नहीं।

सत्संगियो जंग मंगयानी दी गल है पक्षतान दी ए साखी। सतगुरां ने भाग लाए इहदे घर पुत्र होया। आपां संसार विच तकिया है दात प्यारी बिसरिया दा तारा। जदों दातां मिल जान ते देण वाले नूं भुल जांदा है। मंगदा गुरुद्वारियों है ते खुशियां ठेकियां ते कलबां विच जाके मनांदा है। आ पुत्र होया ना गुरु नूं भुल गया। शराबां दियां पेटियां खुल गईयां ते अपने मित्रां नूं शराबां ते कबाबां दे नाल खुश कर रहा है। समां बीतदा गया पुत्र वड्डा हो गया।

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कढ दिता। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोलती है। एडिया एडिया उच्चिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा आनंद सिंह जी नानक सरवाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़िया भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडिया मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलदे ने ते मेरे तो सुनिया नहीं जांदा। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे ओए सेठ, ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाणगियां, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे, सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड्डे गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देवो। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे, क्यों ना खुशियां आ जा। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दित्ती। आखण लगे, बच्चिओ मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने। जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे, उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है, ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं, बाप दी सेवा करया कर। बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बई, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दितियां होईयां ने। ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तों पहलां तकदे हां भई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है, गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने,
जदों सचमुच ही अंदरों आखेंगा सतगुरु मेरा मुझमें किस

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे, ते वड्डे कमरे ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडिया नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनते। ओए गुरसिखा, खुशियां ते तेरे मगर

तेरे घर दे अग्गों गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है वे सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिने तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

0: ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध ते आगत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कार सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी
1: का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सदा जीव नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की सो पर्व ज्ञानी बनी नानक, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक। उतारै जो अंतर नाम, सर्व में पेखै भगवान। निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार, नानको अपरस सगल निस्तारै। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पार त्रै रूप न पेखै नेत्र, साथ की संग साध के टैल सन संगेत। करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद विखिया पर हरै, मन की बासना मनते तट्टर। इंद्री जित पंच दोग ते रहते, नानक खोट मंदै को ऐसा परस। वैष्णु सो जिसु पर सो प्रसन्न, बिचन की माया ते होए भिन्न। कर्म कर दिन हो वै न कर्म, तिस वैष्णु का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भक्त की तर संग्राचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अपना नाम जपावै, नानक वैष्णु परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल दया गै दुष्ट का संग। मन ते मिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नितनीत, मन तनिया पै बिसन प्रीत। हर के चन हृदय वसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोदै। राम नाम सारस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय वसावै, सो पंडित फिर जो न आवै। वेद पुराण सिमित बूझै मूल, सुख में जानै असतूल। जो वर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चो वर्णा में जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए। कर कृपा अंतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कित न पाइए धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखे तुर कर्म। जिस कै मन भाव ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दाल संतर पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सो दस दरगै परवान। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੂਜੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗ ਆਤਮੇ ਉਦਾਸ ਐਸੀ ਯੁਕਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਆਤਮੇ ਹੀ ਤਾਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸਉ ਕਹਾਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸ ਸੋਗ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਕ ਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਬਹਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਚ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਈ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਪੁਰਖ ਕਹੀਐ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਓ ਜਿਤ ਜਿਤ ਕਾ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤੇ ਨਾਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਫਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਓ ਆਪ ਓਏ ਅੰਦਰ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਅਵਿਨਾਸ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਪਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸ ਤਤ ਕਰ

बृहस्पति जब कार्य कछन दिष्टे तब अपन तब कहते होता जब धारी अपन सुन समत तब वैर विरोध के संक मत जब इसका वर्ण चिन्ह न जपत तब अर्क शोक किसे व्याप्त जब अपने आप पर ब्रह्म तब मोह कहाँ के सोबत पर मैं अपन के लिए तीजा नानक करने हर न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनि तब बंद मुक्त कौ किस को गनी जब एक हर अगमा पार तब नरक सुर को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सक्त कहो हो कित ठाए जब आपे आप अपनी ज्योत रह तब कवन डर कवन कत डरे आपन चलते आप करने हर नानक ठाकुर गम अपार अविनाशी सुखे अपने आसन त जन मन कौ कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो कि सोए जब अभिगत गोचर प्रभ दे एका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्बान ते कौन कुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिद्र लगत कहो किस जय जो स्वरूपी जो संग समा वै ते किसे भू कवन तिपता वै कर्ण करावन करने हार नानक करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे परवीन तय वेद कतेव काम को चीन जब आपन आप उरता रहे तो सगन अप सगन काम बिचारे जय अपनी ऊंचे अपने अपने रहते कौन ठाकुर कौन कही है चीरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जान हो आप जय छल छेद भेद समाया उहां किसे व्याप्त माया आप उसको आप देश ते गुण का नाई प्रवेश जय के एक एक भगवंता ते कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपने आप आपतियारा ते कौन कते कौन सुन्ने हरा बो बेअंत उसते ऊंचा नानक आप उसको आप पहुंच जय प्रचो प्रपंच कर ते गुण मैं किन्नो बिस्तार पापुन ते भई कहावत को नरको सुरख।

मिल संगत गुण परगास, जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाए, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत, जित हर रस पाया,

जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन उपजायो।

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता। किलबिक सगल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अस्तु जप भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तल काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्याप्त कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे, सुरस न पावई। सुने मूड चित लाए, चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट, न तिन नरके रहै। हो जो जाकी एक बार, चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह है, सहस पणिजै। अर्ध सहस पुन तीन कहिजै। भाद्रव

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तम पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दों तां गावूं हरि के राम

संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे

अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब आधारो, जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाए नित नित राखे उतारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक।

कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब काब विचार है कई कोट नवतन नाम त्यावै नानक करते का अंत ना पावे है कई कोट नवतन नाम त्यावै है

तो सोना नाथ अनाथ ना मोसर, तो सोना दानी ना मोसो पिखारी। भाई गुरदास जी का यह पावन कवित है। भाई गुरदास जी बख्शिशा करके कहते हैं ए मेरे मालक, तेरे वर्गा कोई पालन हारा नहीं, नाथ नहीं, ते मेरे वर्गा कोई अनाथ नहीं, तेरे वर्गा कोई दानी नहीं, ते मेरे वर्गा कोई भिखारी नहीं, मेरे वर्गा कोई दीन नहीं, ते तेरे वर्गा कोई दयाल नहीं, तू दयालता दा सागर है, मेरे वर्गा कोई अज्ञानी नहीं, ते तेरे वर्गा कोई विचारी नहीं, मेरे वर्गा पतित कोई नहीं, ते सतगुरु तेरे वर्गा पावन कोई नहीं, मेरे वर्गा कोई विकारां दा भरिया नहीं, ते तेरे वर्गा कोई उपकारां दा भरिया नहीं। ऐ सतगुरु मैं औगुणा दा भरिया हाँ, ते तू सतगुरु गुणा दे नाल भरपूर है। आओ इस कवित नूं सारे जणे मिल करके पढ़िए, कोई वी रसना वांझी ना रहे।

इच्छा पूर्वक सर्व सुखदाता हर जाके वस है कांति नाम सो ऐसा हर त्याई मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम

साधन की सेवा लगाए हर नाम के सदगावे साधन की मजरोए साधन की सन्नी बराए नानक ताके बल बल जासा साधन ताके मटे माने सोनी

नमस्कार नानक तिन पाया खाद बीज पता न दुलास अज्ञानी मन रोज करे रोज का विश्वास न हुए की आज्ञा मन माता नानक साहेब सदा दयाल सर्वर हो जान अनित ओम से मन पछतावे लपट रहो तन दंदार ताको हाथ ना है कि हर कृपा नाम का ले लई त्यों नाम उन्ता माया नित्या काम क्रोध विक्राल नित्या रंग संग माया विकस्ता नित्या पशु प्रकृत कमान नानक जप जप जी हर के चरण मिथ्या स्पर्श करु तो रे मिथ्या रसना पहुंच

0: सिद्ध रूप आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के अमित सत्य समान
0: ब्रह्म ज्ञानी के नायब मान
1: ब्रह्म ज्ञानी अंशते ऊंचा
0: जनक न शब्द नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन भय
0: नानक जन प्रभाव करे
1: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना
0: आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चिन्ना
1: ब्रह्म ज्ञानी के सब ऊपर माया
0: ब्रह्म ज्ञानी कितने कुछ बुरा न पाया
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
0: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट मत बरसी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता
1: ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान
0: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस
0: ब्रह्म ज्ञानी का नय विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा
0: ब्रह्म ज्ञानी पर्व कर्मा
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही तंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी लेता उद्बंदा
1: ब्रह्म ज्ञानी के हुए सुखला
0: ब्रह्म ज्ञानी सबल बुला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार

0: ज्ञानी सदा सच जागत,
1: ब्रह्म ज्ञानी बुद्धि अवगत,
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कर्षनानंद,
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास,
1: नान ब्रह्म ज्ञानी का नय विनाश,
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता,
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत,
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ पागी पाई,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बल बल जाइए,
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।

0: ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाय अदा कर।
1: ब्रह्म ज्ञानी सर्व कठा कर।
0: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र कौन बखाने।
1: ब्रह्म ज्ञानी के कद ब्रह्म ज्ञानी जाने।
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार।
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार।
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता।
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता।
0: ब्रह्म ज्ञानी मुख झुक जी का दाता।
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ।
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार।

आत्मा प्रीत निरंजन दर्श साध की टाल संग संगीत सत्य जाने आपस को मंदा मन की वासना मन ते डराए नानक कोट मदे को आशा बरसो

जानत अपना बचै। निमुख माय चार कुंड फिरावै। नानक दे जन सतनाम ले नानक जीव दे कबड़ाई कर्ण कराम सर्व को नाथ जो तिस भावै सोई बंदी प्रभु सो गुर संघर्ष प्रभु बब काश दयाल नानक आप मिलावण हार प्रभु सोए रह दिन रात प्रभु सर्व की ओत्र बाल प्रभु विकारी नीच का साजा प्रभु बुला बुला कहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै प्रभु मोन तारी लावै ध्यान प्रभु से सद मुख ज्ञान अनि जोन पर मैं परमिया जो प्रभावै तिवे न जावै नानक दूजा वर न कोई उस स्थान ते वर न आवै उस स्थान का नहीं विनाश सदा उसे पार ब्रह्म कै संग जो ज्योति संग ज्योति।

0: के दुखन जमते नहीं छुटे,
1: सांत
0: के दुखन नरक में पाए, सांत के दुखन सुख पाते ही न,
1: सांत
0: के दुखन तान प्रश्न होए, नानक संसंग निंदक भी तरे, संतन के दुखन का जो लवे,
1: संत
0: के दुखन त्रिजोन किरमाए,
1: संत
0: के दुखन सब कुछ चले,
1: संत
0: के दुखन नीच नीच आए, नानक संत पावे तो विगत पाए, संत का निंदक मिंट किंड पाई, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक दुखी हार दीन, संत के निंदक को सदा विजोग, नानक संत पावे तो इसका भी होय मोक, संत का दुखी से का नहीं मित, संत के दुखी को सतम सुख गए, संत का दुखी सदा विकारी, संत की दुख न दुख दे डरे, नानक संत पावे तो लय मिलाए, संत का दुखी कित का न बुझे, संत का दुखी उजड़ पाई है, सास में न मृत किलो था,
1: संत के दुखी की जड़ किचना,
0: अपन भी जापे ही खाए,
1: संत के दुखी को अवर न रख,
0: नान संत पाए तो लय अवार,
1: संत का दुखी
0: जो बचल भी मछली तड़पड़ाए,
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजे।

0: नानक रोज इस पाज कोई किया
1: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए
0: संत के लिए कोई को के दरगाह मिले सुजाए
1: संत का दुखी सदा सहकाई है
0: संत का दुखी नाम रहना जीवाया
1: संत के दुखी की पूजे ना
0: संत का दुखी उठला नरासा
1: संत के दुखी न त्रिष्टे कोए
0: जैसा पाए ताजा कोई होए
1: माया कितना मिटे कोए
0: नानक जाना साचा सोए
1: सब कर तिसके ओ करने हार
0: सदा सदा तिसको नमस्कार
1: रब की उस्तत करो दिन रात
0: जैसे त्याओ साज गिराज
1: सब कुछ करते तिसका किया
0: जैसा करे तैसा को दिया
1: अपना खेल आप करने हार।

0: एक दूग ब्रह्म भौ जाए अश्वदी मन देवन को एक भगवान भोरना दिशा लागे आए मन कह कुछ नहीं आत इसका नाम रखन प्रोए नानक विघ्न लागे कोए करन मेरे सद व्यवहार सदा सवेला कर ले जियो सा संग बिन सा सब संग मेरा भाव जपिया अरविंद कह नानक कुचल मता सदा सदा हर के गुण गाए से तनवंद कने संसार सदा सदा जानो ते सुखी दूत की ओसो जी जान नानक तसंजन जान्या तिसकी जानो तृष्णा पूजै सर्वरोग त्यौहार जन रहत विष्ट माय सोई निर्वाण तिसकी कटिया जम की फासा नानक तसन अलग दुख आज्ञाकारी दारी सब निहाल कृपा कर नानक तिन पुरु को उत्तम करमान
1: जो कुछ करे सो प्रभु कह रहा
0: सदा सदा उसे हर संग हर बुझान सोए जैसा सत सत चाना सुख न दान अनुभव

0: मन की आलोचना पूर प्रभु के काल से अभय जागु सच तार बोलो काय हुर जान लबड़ रस लो बीर दंग नानक बसेती कर जाए जिस बखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर
0: पाया हरि मान लियो मन मूल लाल की संत संचाल तन तन कह सब
1: कोई
0: पार बिरला व्यापार चरण साध के तो पियो साध की धूर करो स्नान साध सेवा वड़पा की पाई अनेक बिगनते साधु राख उड़ गई संत दरियाया मृतक जीवा लनार सब निदान जाकी दृष्टि माए सब किस तिस्का करने जोग जब जन सदा सदा दिन रहनी कर कृपा जिसको नाम दिया जाके मन को की प्रतीत भगत भव सुनिय ते लोए सच करनी सरता की रत साची दिस साचा आकार

0: पूजा सत सतार
1: दर्शन सत सत पेखन हार
0: नाम सत सत्य अवनार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुण आपे गुणकारी
1: सत सत प्रवक्ता
0: सुरत सत सत सुज संता
1: हार को सत सब होए
0: नाम सत सत प्रभु सोए
1: स्वरूप हृदय जिन जाने
0: कर्ण क्राउन तिन मूल पुजान्या
1: हृदय विश्वास
0: प्रवाया तत ज्ञान तिस मन बुगड़ाया जिस दे उपजत समय समाना तौको बिन न कह न जाई नारायण मिले नानक एक ठाकुर के सेव सदा पुजारी ठाकुर के सेव के निर्मल रीत नौका सेवक नाम कह रंग सेव की रख निरंकार अपने सेवक की सर पर रखा अपने सेवक को नाम जपाई ताकि गतमित कोई न लाखा करके सेवक उच्च से उच्चे
1: जो प्रभु अपनी सेवा
0: नानक सो सेवक दास जस लौटाया कसम करे लस्कुर कोड लाखा जिसके कर्तव्य जात सब आकार।

जब आकार कृष्ण दृष्टिता जब धारी आपन संसमाद जब इसका वरण चैन न जापत जब अपन आप आप पार ब्रह्म अपन केला प्रति जा जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक रगम पार जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए जब आप अपनी ज्योत तर अपन चलता आप करने हार अब नासी सुख अपनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अवगत गोचर प्रभ लेखा जब नाथ नंजन गोचर अगति अपन आप आप ही चर्चा जय निर्मल पुरुष पर्वत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय सेवल जय स्वरूप केवल जगदीश जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावे कौन क्राउन करने हार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व कला पे परवीन जब अपन आप आप उतार अपन उच अपन आप नेरा विस्मन विस्मरे विस्माद जय चल चेत भेद समाया आपस को आप आदेश जय एक एक भगवंता जय अपन आप आप पतियारा अव्यंत उच दे ऊंचा जय आप रच प्रपंच आकार आप कुंत पई कावत हाल जाल माया जंजाल दुख सुख मान अपमान अपन के लाभ कर देखा जय भगत उपगत आप धूपा का पेतनी आप कौतुक कर नंद चूज जिस

0: ब्रजाज नाम सुवारी सतरन को बल मोबद कियो कलेवरे की वीर जानत सब गुर कृपा दृष्ट कर बोला सुखाए शांति सुखी
1: एक एक की पीर पहचाने।

0: अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुर रामदास कल उचरे तो सहज सरोवर बास।
1: वाहे गुरु जी, गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हर हृदय निवासे, जिनको गुरु सो प्रसन्न दुरंत दुरंतर नासे। गुर जिनको सो प्रसन्न मान अभिमान निवारे, जिनको गुरु सो प्रसन्न शब्द लग भव चल तारे। परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके थ्यो जन्म जाग, श्री गुरु शरण पज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग। परचो प्रमाण गुर पायो जिन सके थ्यो।

0: सतगुर खे मताणया जुगजूत समाणे अनभो ने जा नाम टेक जित भगत अगाणे गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एह राज जोग गुर रामदास तुम हु रस जाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणे एह राज जोग गुर रामदास तुम हु रस जाने।
1: जनक सोई जिन जानिया उन मन रथ तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर

जी। जा को मुन ध्यान तरे फिरत सगल जुग, कहबू कै कऊ पावे आत्म परगास को, वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जा को, शिव मुन गहनत जात कबलास को, जागो जोगी जति सिद्ध साधिक अनेक तप, जटा जूट फेंक किए फिरत उदास को, सोतिन सतगुर।

0: सके कोए।
1: जे को खाए आखन पाए ओ जाने जेतियां मोहि खाए।
0: जाने आपे दे आके सेवे के के।
1: जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह।
0: अमल
1: आवे अमुल लै जाहे अमुल पाए।

आदिष्ट स आदेश आद अनिल अनाद अनाद जुग जुग एको वेस कर कर वेख सृजनहार नानक सच्चे की साची कार एक दूजे पौ लख होहे लख होवै लखवीस ए त्राह पत पवड़िया चढ़िया होए कीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस जोर न जीवन मरन है जोर जोर न राजमाल मनसोर जिस हाथ जोर कर विखे सोए नानक उत्तम नीच न कोए तिस वे धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम।

0: अनाद है, अजय है, अजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, भूत है, अपर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है,
1: अमीक है, रमीक है, तंद है, बंद है,
0: निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है,
1: अला है, अजाल है, अनंत है, महंत है,
0: अलीक है, निर्सरीक है, निर्लंब है, असंभ है,
1: अगम है, जम है, भूत है, शूत है,
0: अलोक है, अशोक है, अकर्म है।

0: याद अदेव है कि आप अपेव हैं के रोजी रज़ा के रही में रिहा के
1: पाक भी अब है के गए भूल गए हैं
0: के अफगुल गुनाह है के शाहन शाह है
1: के कारण गुनित है के रोजी दिया दे
0: के राजक रहीम है के कर्मं करीम है
1: के सर्वंगली है के सर्वंगली है
0: के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य
1: के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौन है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है
0: के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है
1: के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है
0: के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता
1: के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी
0: के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है
1: के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है
0: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
0: के सर्वत्र मान्य सदैव प्रधान्य
1: है के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र तापिय है
0: के सर्वत्र पान्य के सर्वत्र मान्य
1: के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र
0: के सर्वन कली में के परमन फहीम है
1: के अकल अलाम है के साहिब कलाम है
0: के हुस्न अल वजू है तमाम अल रजू है
1: हमें सुसलाम है सलीकत मुदाम है
0: गनीमुल शिकस्ते गरीब।

के हुस्नल चराग है फेरोजी दिहंत है के राजक रहंद है गनी मुल्क राज है गरीबुल निवाज है।

0: जय तुम पापन के पाप पुंज कपेंगे।
1: सात समूह पर सन फिरे जग सत्र सबे अवलोक चपेंगे। कोट स्नान गजात गदान ने स्वयंवर साज भरेंगे। जे नर श्री पद के प्रश्न भगत नर फेर ना दे तरेंगे। नाथ फ्रियोलिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक वायो।
0: ऐसी ही ऐसी सब बैस बतायो।

0: को फूल राजा हुए बैठा को सिमट पे संकीर गैठा
1: स्वरूप से
0: अब रचा मेरी तुम करो सिख बाण सिख संगरो
1: सकल मलेश करो रण काता
0: जय सुचतव सरनी परे तिनके दुष्ट कित वह मरे
1: पुरख जवान पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब डारे
0: जो कल को एक बार त्याये ताके काल निकट नहीं।

0: को सिख गुरु से ती सन्मुख होवे
1: होवे ता सन्मुख सिख कोई जियो रे गुरु नाले
0: गुरु के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मे समाले
1: आप शर सदा रहे पन्ने गुरु भी नव न जाने कोई
0: कहे नानक सुनो संतोषो सिख सन्मुख होए
1: जे को गुरु ते वे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त न पावे
0: पावे मुक्त न होरते कोई पूछे विवेकिया जाए
1: अनेक जोनी परमावे बिन सतगुरु मुक्त न पाए
0: फिर मुक्त पाए लाख चरनी सतगुरु शब्द सुनाए
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए
0: आवो सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची बाणी
1: बाणी ता गावो गुरु के ही बाणी आसिर बाणी
0: जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी
1: पीवो अमर सदा रोहा रंग जप्यो सारक पानी
0: कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: कहते कच्चे सुंदे कच्चे कच्ची आ गुण खाणी
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी
1: जिन जिन का हिर लिया माया बोलन पे रवानी
0: कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ
0: शब्द रतन जिन मन लागा ए हुआ समाओ
1: शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए
1: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ
0: शक्त आप उपाय के करता आपे हुक्म वर्ताए
1: हुक्म वर्ताए आप रखे गुरु किसे बुझाए।

0: तेरी प्यास न जाए,
1: प्यास न जाए, होरत कीते जिचर हरस पल्ले न पाए,
0: हरस पाए पल्ले पिए, हरस बोर न तिसना लागे आए,
1: यो हरस कन्नी पाईए सतगुरु मिले जिसाए,
0: कहे नानक होरे अनरस सब विसरे जहर वसे मने।

0: जान
1: पतित उदारन पहर हर अनाथ के नाथ
0: कहो नानक तह जानिए सदा बस्त तुम सा।

बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार। श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याई जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरे आए घर नौ नित आवै ताए। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दत्त।

सुते अपराध करत है जिते जननी चीत ना राख सुते ते रामैया हों बारिक तेरा काहे ना खंडस अवगुण मेरा रहाओ जे अत क्रोप कर है करताया ताम पे चीत न राख समाया चिंत पवन मन पर्यो हमारा नाम बिना कैसे उतरस पारा देहे बिमल मत सदा शरीरा सहज सहज गुण रवै कबीरा सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸੰਕੁਰ ਸੰ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ

लेकिन सतगुरु किने ना पाया, कर प्रगट आख सुनाया। जिन बिचों मोह चुकाया, जिन सच्चे

शब्दं ब्राह्मणा खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्द।

0: दस पैर होवे कलेश धन ने पुजे पुराण उठा बकरा खाड़ा चौके ऊपर किसे नजाड़ा देखे चौका ऊपर है बैठे कुड़िया वे मत पिटा पिटन पिटा फेर करे मन झूठे चुली परे
1: सच से आई है
0: सुच हो वह कास

हम सरदीन दयाल न तुम सर अब पतियार क्या कीजै बचनी तोर मोर मन दीजै जन कौ पूरन दीजै बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिसुरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास वास लग जीवा चिर पयो दर्शन देखे बहुत जन्म बिछुरे थे माधो एह जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवा